कितने भी चंगे कर्म कर लवे, ओदे कर्म कीते हुए सारे निष्फल चले जांदे। जिमें कि 18 तीर

बहुत प्रसाद करावे, पाठ करावे, पर जे निंदा हो गई ओ भी किसी महापुरख दी, ते कोई भी कीता होया कर्म फलीभूत नहीं हुंदा।

नट नारायण राग दे अधीन गुरु ग्रंथ साहिब विच एक होर राग स्वरूप मिलता है, वह है नट। असल विच नट नारायण राग नट दी ही एक प्रकार है, पर दोनों राग भिन्न अते स्वतंत्र राग हैं। जिथे गुरुदेव ने नट नारायण की वरतों कीती है, उत्थे स्पष्ट तौर ते नट नारायण महला चौथा पंजवा आदि लिखा है। नट नारायण का स्वभाव है काला। ये काल मिटदी है ना दे अमृत जल नाल। नाम नाल मन थिर हो जाएगा, नटखट नहीं रहेगा। नट नारायण दी थां नर नारायण ले लवेगा। खिन खिन नर नारायण गावे है, मुख बोले है नर नर हरे। मन दी स्थिरता ले नाम अमृत जल है, बाणी दे सार विच जिस नाल निस्तारा होना है। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। इस राग दे आरोह विच सत्ते सुर अते अवरोह विच धैवत अते गंधार वकल ढंग नाल लगदे हन। दोनों मध्यम लगदे हन। इस दे गौण दा समय राग दा दूसरा पहर है। राग नट नारायण विच पहला शब्द मेरे मन सेब सफल हर काल, ले गुरपग रेन रवाल। गुरु रामदास जी पातशाह जी दी रचना। इस शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई परमजोत सिंह जी। दूजा शब्द सरवण करो भाई हरिंदर सिंह हरचरण सिंह जी फक्कर। गुरु अर्जन देव जी दी रचना है उलाह नू मैं काहू न दियो। पहला शब्द मेरे मन सेव सफल हर काल।

दामद करीम मैं तेरी पनाह विच आया हां, मेरी झोली अंदर बंदगी दी खैर पा। आखिर ऐसा क्यों? इस भेद नूं जे जानना होवे बखूबी ते फिर भाई साहब भाई गुरदास जी नूं पुछ करनी पवेगी, भाई साहब जी बाबा फरीद जी ने यह मंग क्यों कीती है, असी क्यों ऐसी मंग करिए, असी भी जबकि इतना संसार पदार्थों नाल भरिया होया है और उन्हां दी लोड़ भी है, उन्हां तो बगैर अज जीवन चलना भी बड़ा मुश्किल है। पर भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिता है इस गल का, तीन पौड़ियां भाई साहब जी ने उच्चारण कीतियां इस प्रति, धरती नूं सवाल कीता क्योंकि बाबा जी ने एक पवित्र बचन जो बाबा फरीद जी ने आखिया है, कहन लगे मैं बंदगी दी मंग इस करके करदा हां क्योंकि संसार दे अंदर मैं बहुत लोग वेखे हन जो अपनी संसार दी जीवन क्रिया

जीव जंत उस पानी अंदर रहने वाले हैं, फिर तेन उन्हों का भारत जरूर व्यापदा होगा। इतनिया नदियां नाले निरंतर चल रहे जिन्हों का कोई अंदाजा नहीं कितना पानी, ते सारा पानी फिर जिस समुद्र च जाके पैंदा उहदा कोई अंदाजा नहीं, फिर तेन उहदा भारत जरूर व्यापदा होगा। ते पाजी साहब जी ने यह सवाल किया।

नहीं लगता इतना कुछ संसार के अंदर मैं गिण मारे है। भला कोई ऐसी वस्तु भी है जो तेन भारी लगती हो तेन भार व्यापदा हो। भाई साहब जी आखन लगे, कहन लगे, धरती ने जवाब दिता, कहन लगी हां मैनू किसी का भार व्यापद है। भाई साहब जी कहने वो कि चीज है जो तेन

तिमी कसम ते आयो इला जनता के बच के ना इत वेखी जगत पायो इकला नु तुम एने काबू दुख आया भूखी पाते जाने जिते तू।

कैसे तुम सम सत में अच्छे साथ रहे, सबको ससमावे कह रहे प्रभु राम नाम देवा मैसूर। नाय नाय प्राचु जाए नान तो मुखंत्र पाए, जुन में जो छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम फया पाजाद गोपी ले बिंद्रावन मेरन।

कर्मी सहज न उपजे सहज सहसा न जाय कर्मी सहज न उपजे बिन सहज सहसा न जाय न जाय सहसा किते संजम रहे कर्मी कमाय सहसे जियो मलीन है कित संजम तोता जाय कित संजम तोता जाय मन तो

अपनी सेवा प्रवान करने जनता के रूप में जो भी आती है दुनिया की कम्बा का जरूर जाकर सुबह के लिए इसको लेकर आप गुरु दरबार में सादगी भरिए आप अमृत ने कीर्तन रागा ने कुछ गुरु ग्रंथ साहब की मर्यादा अनुसार गुरु अर्जन साहब की मर्यादा अनुसार सरवण कीता है स्वतंत्रता देव आओ अंत दे सर्वत माए भाई कितने गुरु चरणा बैठे हो छोरिया की अरदास बेनती चौधरी करनी है सतगुरु दात्या की हे काल पुरख सर्व शक्तिमान परम पिता परमेश्वर कृपा करो साडे छोरिया अपने पवित्र नाम की खैर पाओ आओ जपो सारे लवाओ हाजियां कोई रिश्ता खाज ना जाए।

को बनज करे, रतन पारखु होए जहरी कहावई। कौड़ियां विचों पैसे, पैसियां विचों रुपये, फिर सोना, फिर तकड़ा व्यापारी हीरियां दा आखरी स्टेज ते पहुंच गया। भाई साहब जी कहंदे ने हौले हौले तरक्की कीती ते सब तो उच्ची मंजिल ते पहुंच गया ओ व्यापारी, पर शुरू होया कौडियां तो। कौडा पैसा रुपया सुनैया को बनज करे, रतन पारखु हो जहरी कहावई। जहरी कहाए पुन कौडा को बनज करे, पंच प्रवान में पत सटा घटावे। की वेखिया फिर ओई मैले कुचैले कपड़े पाए, ते थां थां ते होका देंदा फिरदा, ते कौडियां नाल फिर व्यापार शुरू हो गया। इतना हीरियां दा उच्चा व्यापारी हो के ते जिथों व्यापार शुरू कीता सी ऐसा धक्का लगा कि जिथों व्यापार शुरू कीता सी उथों फिर शुरू होया। लोग हसदे ने, मजाक उड़ांदे ने, कर्जे देण वाले सिर ते खड़े हो जांदे ने, लैण वाले भी। गुरु की साध संगत ओ मुसीबत विच फस जांदा है बंदा। लोग कहंदे ने आखिर तू कीता की। भाई साहब जी अपनी गल ते आउंदे हन, वचन करदे हैं

लोक पर लोक बिखे ऊंच पद पावई। छाड़ गुरुदेव आन देव को सेवक होए, निफल जन्म कपूत होए हसावई। लोकां दी सेवा करदा, संतां दी सेवा करदा, देव देवतियां नूं मंदा होया मनुख उच्चे ते सुच्चे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणां विच पुज गया। पर की वेख्या, जेड़ा सीस गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अर्पण हो गया, कोई थोड़ी जी दुख सुख आ गया ते फिर थां थां ते भटकन लग पिया। कदी किसे संत कोल, कदी किसे कोल, कदी किसे देवी कोल, कदी किसे देवते कोल, ते फिर लोग मजाकां करदे ने, आ देखो गुरु का सिख किथे किथे भटकदा फिरदा। आ थोड़े दिन ही होए है, मैं एक प्रेमी गुरसिख नूं पुछया की हाल चाल है, कहिंदा कम तुर नहीं रहा, बड़ा परेशान हां। कहिंदा एक चिट्ठी आई है, ए भेजी है साईं बाबा वालियां ने, आख्या एदा जाप करो तुहाडे मन नूं भी शांति मिलेगी, ते नौ निधियां अठारह सिद्धियां आउणगियां। ते मैं क्या भोले मनुख की करदे फिर, कहिंदा जिथों नौ निधि मिले असीं ओदा ही जाप करना है ना। एक बारी प्यार नाल बोलिए, ते नाल लिखिया सी एदियां 500 कापियां छाप के फिर होर ना पासे वंड। नबज वेख लैंदे ने ए सुहागण किवें अपने मालक नालों टुटे ते नू पतित करिए। ते थां थां ते ऐसियां दुकानां हन, गुरसिख नू बड़ा सावधान होना पैंदा, जिवें पति बिरता स्त्री सावधान होंदी है। मैं क्या गुरमुखा, स्त्री सौरे नू भी मत्था टेकदी है, जेठ देवर दा भी ध्यान रखदी है, ओदा भी सत्कार करदी है, किसे संत नू दुरकारना नहीं। सत्कार अदब हर धर्म दा करना है, पर जो स्त्री अपना मन ते तन अपने मालक नू देंदी है, वो किसे दूजे नू नहीं दे सकदी। इसे तरह अदब सारिया दा कर, पर अपनी जड़ नू ना भुल, नहीं तां मजाक दा कारण बन जाएगा। तू अज साईं बाबे नू मनेगा, कल तेरे बच्चे थोड़ा बहुत ए भी सिक्खी तो पतित हो जाणगे ते मुनकर हो जाणगे। ना सिख ना हिंदू ना गोरे कुछ भी नहीं रहणगे, ते गुरु की साध संगत। गुरु रामदास पातशाह कहंदे ने, ए गुरु आप ही चाहे ता पल्ला पकड़ाए, नहीं तां असी सिख तां छड़ जांदे आ गुरु। बाबा फरीद जी भी कहंदे ने,

सतगुरु मिलिया प्रखंड कर प्रगट आगसराया सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन चुमह चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे सोच तलाया।

सब तो वड्डा मंगता। परमात्मा दे खजाने कदे खत्म नहीं हुंदे और इस मनुख दे कदे भरदे नहीं है, कदी नहीं भरदे, खत्म ही रहंदे ने, घाटे वाल नूं जांदे ने। भावें लख यतन करे के कारू मांगू माया दे गंढ जोड़ लवे, लेकिन फिर भी कमी रहंदी है। एक सियाणा बंदा कहंदा हो इंसान गंजे कारू जमा कर दी बाज ते, घर शबी सुल्तान आली बाज ते, घर तू मैदानी के आखिर मुर्द ने अस्त, ता के आमत जिंदगानी बाज ते, ता की होया। तो भाव है कि इस दे खजाने कदी भरदे नहीं और परमात्मा दे कदी खत्म नहीं हुंदे। सतगुरु गुरु गोविंद सिंह जी कहंदे ने परमात्मा दे खजाने जिहड़े ना अभंगा बेबूते। तो इस इंसान नूं पुत्र चाहिदे ने, तीहां चाहिदियां ने, ए मान मंगदा है, ए तान मंगदा है, ए शक्ति मंगदा है, कुवत कूत मंगदा है, इस नूं सब पदार्थ दुनिया दे चाहिदे ने। लेकिन सतगुरु कहंदे ने ए कोई बहुत उच्चे पाए दी मंग नहीं है, बहुत वधिया मंग नहीं है। परमात्मा बहुत वड्डा दाता है और वाहल शख्सियत है, वो वड्डा दाता है और उस नूं तिल जिन्नी भी तमा नहीं है। पदार्थ दिंदिया वो कदी थकदा नहीं, वड्डा दाता तिल ना तमाए। लेकिन इस इंसान दी तमा तृष्णा खत्म नहीं हुंदी, वो ते वाहल शख्सियत है, देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगा अंतर खाही खाए। इसलिए सतगुरु एक होर जगह वचन करते हैं, दद्दा दाता एक है सब को देवन हार, दिन दे तोट ना आवे अगणित भरे भंडार। तो परमात्मा दिया अनेका खूबियां विचों एक बहुत ही वड्डी खूबी यह है कि वो इस मंगते इंसान दे ऐब देखता है, औगण देखता है, लेकिन दस्तूर इस नूं दे ही जांदा है, सदियां तो दिंदा है, जुगा

मैं तेरे दरदा भिखारी हां मंगता हां। आरता मैंने मंगता, जिथे आरता का अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गो मैंने पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्ति।

એ વસ્તુ વસ્તુનું કોઈ લેન એને બદલે દુઃખ દાટી મરદાનના કાહી ચીર ફિરદા રહ્યા और इस वस्तु के लैण वाला कोई गाहक नहीं है। हार के चरस के मरदाना खड़ा हो गया सोच रहा है मार्क ने उठ के एडी वड्डी दात बख्शी हर के लैण वाला ही कोई कौन लगेगा इसमें मरदाने में सामने तक आए तो अरायण बैठी जिसकी टोकरी गाजर के मूलियां मरदाने ने सोचा चलो मैं इस अरायण को ही दे देंगे कुछ खाण को दे देंगे के अपने पेट में चुपका देते भुख का दुख दूर कर मरदाना अरैण के कोल आके खड़ो मुठ खोली देके आ माई आ लवेगी अरैण ने तकिया ते सिर फिर मैं इस पत्थर नु की कर पर ख्याल है तो पत्थर पर चमकदा बड़ा चलो ले लेनी है मेरे बच्चे पे खेलन बच्चों की खुशी वास्ते माता पिता कितनी कोशिश करें बच्चों खिलौने लेके देते हैं पैसे देते हैं मठियाइया देते हैं साढ़े बच्चे खुश हो बच्चों की खुशी वास्ते माता पिता की कितनी कुर्बानी अनो बच्चे हैं जो वड्डे होके माता पिता की खुशी माता पिता ने बच्चों की खुशी वास्ते केडी वड्डी काल लगा वो बच्चा धन है जो माता पिता की करते बाबा आनंद सिंह जी महाराज पूर्व महापुरुष अपनी पवित्र पावन रचना को वचन कर दे कि जिस बच्चे ने माता पिता की प्रसन्नता ले ली है उस उत्ते रब की सदा ही प्रसन्नता सदा ही क्योंकि माता पिता की बड़ी कहानी पहलू साहबा ने बाणी की लिखा गुरुदेव माता गुरुदेव रहने तक है तो पत्थर पर चमकना बड़ा है लै लेनी है मेरे बच्चे बैठे ले मरदाने ने कहा माई इन्हें बदले की दे देंगी तो तेरी सात संगत अरायण ने टोकरी चो एक मूली चुकी मरदाना बड़ा हैरान है मालिक ने तो कहा मरदानिया बड़ी वड्डी दात है
पहला तो लैण वाला कोई गाहक नहीं मिले, जे मिले तो मुल की पिया एक मुल प्रधाने ने क्या माई एक मूली छोड़ी है तू दो मूलियां तो दे। रैण हस के मैं तो एक मूली भी तेरे उते एहसान करके पी दी, परदेसी जापदा दूरों आया जापदा दूर का पा भी जापदा क्योंकि तेरे पैरों की धूल पर बिटे भी चूंगी। एक मूली भी ऐसा मरदाना अगे अगे हलवाई की दुकान, हलवाई ने तरह तरह दियां मठियाइयां ताजिया तैयार करके सोने चांदी के वर्क लगा के थालां च रखी ताजिया मठियाइयां वल करके भुखे मरदाने के मूह च पानी पाया। मदद हलवाई नूं दे दित्ती, गाकां दी भीड़ पहाड़ तो बड़ी मरदाना लंघदा लंघदा हलवाई दे कोल क्यों जी आ लौंगे हलवाई ने तकिया ते सिर फेरे मैं शुरू की करन पर क्या लाया अद्धी शताकी का वट्टा गुम हो गया उहदी थां ते रख लिया करन क्योंकि उस वेले पत्थर दे ही वट्टे चाहिए जिस तरह आजकल लोहे दे वट्टे हैं कई तरह के साधन बन गए हैं हूं तक और उस वेले पत्थर दे हूं भी कदे सुल्तानपुर तुसीं जाओ जिथे मेरे धन गुरु नानक पातशाह जी ने मोदी खाना चलाए दुकान चलाई तकड़ी तोली वो वट्टे हूं भी पे हलवाई भी तके है तो पत्थर पर चमकदा बड़ा मेरा भी इतनी ताकी का वट्टा गुम हो गया ओदी थां ते रख लवांगा। हलवाई कह लगा लै ले मरदाने ने कहा एदे बदले फिर मठियाई किन्नी दोगे। हलवाई ने कहा इन पाओ मठियाई मरदाने ने कहा जी पा थोड़ी है कोई ज्यादा दो क्योंकि मैं कल्ला नहीं मेरे नाल मेरा मालिक मैं उन्हें भुखा तो नहीं कहना पर तीन दिन हो गए हैं रोटी उन्हें भी नहीं खाई पता नहीं किहड़े आहार नालों जी एक शेर मठियाई दर दी हलवाई ने कहा इस तू ज्यादा नहीं मेरी मरदाना निराश होके वापस अगों कोई भला पुरुष मिले उदास मरदाने वाल तक के पूछा जी हो जी तुसी उदास क्यों हो। मरदाने ने सारी विख्या दी मालक ने टुट के दात बख्शी है कोई लैण वाला नहीं मिलता किसी नूं दिखानी सी मरदाने ने क्या दिखाई किनू अरैल होर किसू हलवाई इन्हें क्या क्षमा कर जी थोड़े को वस्तु है ये अरैणा से हलवाइया के लैण वाली मरदाने ने कहा फिर कौन लेगा। इस गुरमुख ने कहा फलां बाजार में चले जाओ उत्थे एक बड़ी सुंदर दुकान उस दुकान के अंदर शीशे के चौकियों के अंदर मैं इन्होंजियां कई लाल लाल गीटियां पईयां तकी उत्थे ले जाओ एदा मुल उत्थे कर। मरदाना थोड़ा जिहा खुश हो गया वह दुकान किसकी है जौरी उस जौरी का नाम की है जी उसका नाम है सालस है मरदाना पुछता पुछा साल सराय जौरी की दुकान पर आके चले दुकान बड़ी सुंदर
बड़ा सुंदर कारपेट बिछया है, अंदरों सेंट दिया खुशबू आ रही है। मरदाने ने जिसने दुकान के अंदर पैर पाया, साल सराय में तकिया कोई आया, बड़े अदब नाल उठ के हाथ जोड़ के आओ जी आया नू इत्थे बैठ। मरदाने ने सोनी चेयर पे कुर्सी पे मरदाना बड़ा खुश, सोचन लगा मन लेना देना तो एक पासे ने, पर बोलिया बड़ा मिठा, मिठा बोलना भी एक जादू, मिठा बोलना भी इंसानियत, इंसान होके कौड़ा बोलता है ओदा बोलना परवान, ऐसा बचन कदे भी ना करिए जिदे नाल किसे दे मन नूं दुख। भाई गुरनाथ जी ने भी लिखिया, सिख दा जीवन पिछले राती जागण, नाम दान इशनान दिलाए फिर मिठा बोलन निव चलन हाथों दे के भला। परदाना बड़ा खुश मिठा बोल, परदाने ने मुठ खोली, शाह जी आ लोगे? सास राय ने क्या जरा नौकर नु बुलाया, बच्चा धड़का जी मालिक, अंदर चौकी ले आंदी, एदे उत्ते चिट्टा रुमाल पापा जी। सास राय ने मरदाने वल तकिया ते किया, जी ए कोई कौड़ियां नहीं जो मिट्टी कट्टे विच रोलोगे, ए लाल है इनू इत्थे रखो। मरदाने ने रख, साल सराय ने परख वाली अख ना लाल नू तकिया, फिर लाल वल वेंदिया वेंदिया साल सराय का सिर चुक गया, सिर चुकया, नौकर वल तकिया, बेटा धरका जी मालिक, लिया 100 रुपये की थैली लिया। साल सराय ने लाल दे के रख के मत्था टेकया, लाल ते 101 रुपया साल सराय ने मरदाने की झोली पा। मरदाना बहुत हैरान हो गया, सोचें कदे 101 रुपये की थैली वल तकद, कदे साल सराय के मूह वल वेखद, रह नहीं सकिया। मरदाना कह लगा, शाह जी गुस्ताखी माफ करे जे, भला कोई नशा पानी तो नहीं खाते पीते? आखो श्री वाले साल सराय ने क्या कोई नशा? प्रधाना कह लगा, फिर आके किता जी, नाले लाल भी नहीं लिया, नाले 101 रुपया हो। साल सराय के नेत्र पर उस्तादा दे वारे वारे, मेरे उस्ताद ने मैनू किया, साल सराय यो जिया सच्चा ते सुचा लाल दुनिया से, पर जे तेरे पाग जागन यो जे लाल दे तेनू दर्शन हो जान, ओदा मुल पा के अपमान न करी, 101 रुपया दर्शन भेजा रख, यह तो इनी भेज। मरदाना बड़ा खुश, बाबा तू भी तन है, तेरी दात भी तन, भेट 101 रुपये, पर कौन मेरा करदा है? साल सराय जिन्हें परख लिया लाल लाल हो, पर जिस परख वाली अखा दे कोल आ गया तो मुड़ नहीं पै, पेट अदब हो रहे, सत्कार हो। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने लिखे, पर

कद्र लाले उग आशिक न दानद हेच कस्तीम पे याकूत दानद चश्म गौहर बार बार। इसका तर्जमा किसी ने किया है पंजाबी ते लिखा है प्रेमी बाजो ए सरमज प्रेमी बाजो ए सरमज नू

जन नानक को हर बख्श ले हो, जन नानक को हर बख्श ले हो। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जबे इयानिया हर तुम मत अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पा, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुटे मेल मिला, हर कृपा कर सुन।

अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूढ़ नहीं पायो, भिन्न भिन्न सब हो कर जाना, एक रूप किन हो पहचाना, जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, तिन समझे सिद्ध हाथ ना नानक अंगद को बप धरा, धर्म प्रचुर इह जग मो करा, अमरदास पुन नाम कहायो, जन दीपक ते दीप जगायो, जग वरदान सवा को आवा, रामदास तब गुरु विजय पूर्व देवड़ा, जिसकी मस्त किसे घर आवे, बैठा सोधी पादशाह, रामदास सतगुरु। जग तो मन ध्यान धरे फिरत सकल जग, प्रभु को पावे आत्म प्रकाश को, वेद बाणी सहित ब्रंच जस गावे जग को, शिव मन गहना तजात कविलास को, जाको जोगी जनी सिद्ध साधक अनेक तप, जटाजूट पेख किए फिर उदास को, सो तिन सतगुर सुख भाए।

नाम मिले मन तृप्ति है बिन नामे दिग जीवा। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुण दास, और किस विट्टो चौखनिए मैं नाम करे परदास मेरे प्रीत।

गुरु साजी नवाजी साहब सिंह जी हो राग श्री राग तुहाडी सेवा विच पढ़न दी सेवा कर रहे हैं। श्री राग दा जो चलन है वो दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनों असीं ऋषभ कहने आ सा तो बाद दूसरा स्वर रे है उसनों ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान सुर है, और पंचम जिसनों पा कहने सारे गामा पा पंचमा सुर जो है वो इसका वजीर सुर है। इन दोनों सुरां दे सुमेल दे नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम हुआ है, जिस तरह

जो पड़ताल है जिसनू पड़ताल गुरु मातंद्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नू बदल के गायन करना। जिवे हुण पहला जो रहाव है वह ध्रुपद ताल च आया है, हुण ताल बदल गया। इसनू असी दीप चंदी कहने हैं, 14 सुर मात्र का ताल है, ताल बदल गया है, इसनू पड़ताल कहांगे। और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने, तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लाओ।

शब्द है वह गवैया नू महाराज का हुक्म है। वह कहते ने तदरदानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। यह ग्रंथ जो है सर्वलोक प्रकाश की बाणी है। धागड़ी धर्म दृढ़ तांग दागड़ी दिम दिरना, बागड़ी वृत्ते बांग तागड़ी तोम तोम तोम दिरना, दागड़ी दे दे ताल कागड़ी कोम किरना। यह साहब जी ने तराना गाया तो इसका मतलब है दागड़ी दे दे ताल कागड़ी कोम किरना। यह अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने सरगमा लगा और ताना लगा कुम किरना नाल दे दे ताल दागड़ी दे दे ताल के तुसी ताना लगाते हुए ताल का ना ख्याल भुल जाए। ताना भी लगाओ और ताल दे अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना, बाणी नू राग विच ताल विच गायन करना, इस नू कीर्तन कहेंगे। जे राग ते ताल कट दियो बाणी पढ़ी जाओ वह कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जिहड़ा है वह राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है, राग और ताल दे विच गायन करना जिहड़ा है वह कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे दागड़ दी दे दे ताल, ताल दे विच तुसी घूम किरना नाल पलटे लगाओ सरगमा करो और ताना लगाओ। तो उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

श्रवण करो भाई बलबीर सिंह जी ने रागी जति पासू शब्द बिसर गई सब तात पर आई जब ते साध संगत मोहे पाई।

चंद्रकोश जो माल का उसे निषाद बदल गया ना, माल कौश का निषाद नीमा, चंद्र कौश का निषाद उपरला, इस चंद्र कौश और सूरज कौश।

पंचम लगाउण नाल इस सूरज कौंस बन जांदा है। और जो कौंस योग राग दे नाल कौंस मिलाप दे नाल जो कौंस बन जांदा है।

0: श्रवण करो।
1: पहला चार ताल है, फिर तीन ताल है, फिर दो ताल है, फिर एक ताल है।

एक ताल दो ताल हुण तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हुण तीन ताल जो कब तीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब मेरा वरे आ

एक ताल, दो ताल, तीन ताल, चार ताल और चार ही राग, माल कौस, चंद्र कौस, सूर्य कौस, जोग कौस, चार ही पंक्तियां, बिसर गई सब तात्पराई, जब ते सत्संग मो पाई, ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई, जो प्रभु की नो सो भल मान्यो, इस मत साधु दे पाई, सब मेरा रहे प्रभु एक है, देख देख नानक बिकसाई, आप जी ने श्रवण किया है, तराना, साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने, ये तराना जेड़ा है, ये अनकौमा जेड़िया ने गैर सिखा नू झुका के रख देने वाली बात है। मैं इतने बहुत वड्डे वड्डे गंधर्व गायक कट्ठे हुए सी, कहने लगे जी सिखा नू तां राग गाउणा ही नहीं आउंदा, ऐसा सारे सामने ना किया, कहिंदे असल वार तां ला लैंदे आ पर राग गाउणा नहीं आउंदा। मैं कहा जी राग साडे सतगुरां ने गाए आ, कहिंदे गाए ते तुसीं सुनाओ, ये तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहिंदे जी ये सानूं लिखा दिओ तराना, असीं तां इस तरह की बंदिश कदी सुनी ही नहीं। मैं कहा जी ये फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह की बात है, उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने को ही श्रवण करो, उन्होंने को ही दास प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल साहब गुरु गोबिंद सिंह के चरणों नमस्कार की, इतने दुर्गाना मंदिर की बात है, सारे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब मान तो तराना श्रवण करना, साहब सच्चे पातशाह आप गाते रहे और आप इन्होंने इस तरह के 20 तराने श्री सरवलो प्रकाश ग्रंथ मंदिर विद्यमान ने, कभी आप दर्शन करना तो तद्र दानी दानी दोमानी तल तोम तिरना, तद्र दानी दानी दोमानी तल तोम तिरना, तल तोम तिरना तल तोम तिरना। जिस वेले आवे ना तुम दानी उदो महाराज नूं मत्था टेकना जे, तुम दानी हम भिखारी है और तुम दानी है, तदर दानी दानी तुम दानी तरल तुम दिरना, तरल तुम दिरना, तरल तुम दिरना, तदर दानी दानी तुम दानी तरल तुम दिरना, तरल तुम दिरना, तरल तुम दिरना, तदर दानी दानी।

सो अंत सो बहर अनंत कटकट व्याप रिहा भगवंत तन महे आकाश प्यार सर्व लोक।

विद्या है तेरी सूर साधु और कन्या वाले व्यक्ता है तेरी सूर साधु एक

मेरे सिर की लोहड़ी पैंदी जो गया मैं देखी अजमाइश पूरा उतरदा पर हजूर वैराग चाके कहन लगे गुरा जो गया हो गया मैनू सिखा मैं जिथे जिथे भी अजमाया उथे उथे पूरा उतरिया पर जो गया तो कड़ी अजमाइश की कड़ी साथ की पंथ दे वाली किसे वैराग चाके जोगे नु मुखातब होके कहते हैं

0: क्योंकि यार रोई जाओ उतने तक, जितने तक तेरे अंदर हम मैं पानी बन के खाधानी बाहर नहीं आ जाती। जोगिया की कहीं मैं महाराज मैं भूल गया। हजूर कहने लगे जोगिया भूल गए आप के पाचा। हजूर कहने लगे बख्तिया कुछ नहीं भाई जी। क्योंकि जोगा बख्शिया गया तुम्हें भी बख्शे गए आप सारे बख्शे गए हैं प्यार आखो धन श्री गुरु गोविंद जी का। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को सूरी चढ़ता है उन्हें फिर नहीं देखना है मैरी जगह है जा चंगी है गंदी मंदी था पूरी रोशनी देता है गुरु की मेर हर था जाती अज थोड़े उत्ते भी पता है गुरु थानू भी दाता मिली। जोगा वक्त आ गया पर जो भाई जोगा से ने कहा महाराज एक शंका छोटा जहा रह गया अदूर कहने लगे बार कद महाराज रेखवा दे चवारे
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

ठाकुर तिसते मुख नहीं मोड़ियो, जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोड़ियो। सहज आनंद रखियो गृह पीतर, उठ

अत कल्याणकारी अत सुखदाई अत खुश जायका अत मिठे उपदेश नाल दास दी रुचि है कि सारी संगत ही मुंह मिठा कर दे तामी चंगा ही है रल के वंड के छकना चंगा ही हुंदा है नाले अत मिठा उपदेश रसना तो गावीए इन्ना क जरूर बोलो जिदे नाल आप कथे आप सुनने आ गई अपना बोले आप सुन।